Elumbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

Elumbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: तपाईँ अहिले हेलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: अब रङ थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बस्युगो सफलतालाई लागिरी दर्शन तोला जय मसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुला कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ तथा नला जीवनलाई छेन गदेला अङ्क 19 रङ्गित स्वागत मुला न वियोग तामाङ गेन दार्शनिक राल्फ वाल्डो एमर्सन से तिराम बिबमुबा रंगला समसिगम धिका लस्युगो रंगला मानमग्यम निर्देशित तस्युगो तिनिङा रंगदेन रंगसे तिगा हासिल लस्युबा बिबा बारिरी स्पष्ट दृष्टिकोणला महत्वला बारिरी तम लब्रे सेमुला रंगला लुई रंगसे रंगला लागरी थान्स्युबा दृष्टिकोण अनुसार सोस्युला हिब्रु 11:1 विश्वास लवचा आस लवतम यङला बिसी ढुक्क तवधेन अनङ्बा ताम्री पुराण भर लबा हिन्न विश्वास लवला लागरी राङदेन च्याबकोन तादोला देन सफल तबला लागरी रङसे थे दिश्चुकोन रि गे लादोला चु याकर्गी गेन पाथ हिन्न जुन यङसे अभ्रामला लुइग्याम लोपला रोमी 4:17 परमेश्वर से अभ्राम दा सुंगम वचन रि चुरंग लसी ब्रिबामुला नाई एद जम्मन युल्ला मिगदेला आभा सोला तिगा विषम परमेश्वरला नच्छा अभ्राम याङ जम्मलन आभा हिन्न शिवा गदेदा सोना लबादेन आरेबा गदेदा सोना वचन सेन शोभा परमेश्वर द अभ्राम से विश्वास लजी परमेश्वर से राङला तिङ्री थान्स्युब दर्शन गदेदा दुई लुइरी बस्युब तसै थे तबला लागरी रङसे थे दर्शन रि भरोसा थन्मुला थेन्दे भरोसाला लागरी गे आवश्यक मुला चु अर्थ चु आइन भकी रङला दर्शन हराङला सिपुरा लाला विवा बारिरे रङ छ्याम्नोन बेनन उत्तर गदे मुला चुला अर्थ चुहिन भकी रङ परमेश्वर सी रङला भरोसा थन्मन मुसुला जो देन बेनन उत्तर गदे मुला थेन्दे रङ चरमबद्ध रूब्री कदम चलाबन मुस्युला इच्छा देन अपेक्षाला छ्याम कि परमेश्वर से रङला लुइरी रङला दर्शन द सफल सोसुला रङ रङला दर्शन द पछ्याल सुग तिग्द विषम रङदा थामुला कि परमेश्वर रङला लिच्छ मुस्युला रोसे रङदा रङला शक्ति से आइन्बा रोला शक्ति से लक्षरी दोबरी रो लस्युला जब रङदेन दर्शन तला थेला लागरी प्रतिबद्धता तोला जब परमेश्वर से तिगै लसुला बिसी ब्रन्सुबा आरे रङ रङला दिमाग रङला तर्क रङला प्रतिभा देन वर्षो ग्याम लोप विश्वास शिवगदेला प्रयोग लवन मुसुला रङला लक्ष्य हासिल लबरी थेनी गदे प्रयोग लसुला थेनी रङ शान्ति रि मुसुला जुन सेवन कि परमेश्वर से रङला शक्ति ग्याम रङला कमजोरी गदेदा शक्तिरी परिणत लस्युला स्यान्दो दिग्याम रो मैसुगो पाङ्रा दोषी आविष्कार थलासुगो थे मिगदेसे रङला जोसी दर्शन याङसे लाभा मुला रङसे माइबा सफलता नच्छ नन याङजीवा मुला थे निगदिग्याम लोपसुगो थे निगदेसे चु याङ मरे तिगालाजे जब रङ हलाइसे सफल स्याम्पुमुला थेन्दे थेनी गदेला उदाहरण पछ्याउ लसुला थेन्दे थेरङमन परिणाम गदे याङबरी हम्ब हम्स्युमुला लुइरी रङला दर्शन रङला प्राथमिकता सूचीला शीर्षरी तादोला जा जा तुच्छ ताम गदेदा भविष्य लचु लक्ष्य गे लबरी ग्याम कासुगो हाजी भई अवरोध बिना रङला दर्शन रि गे लबरी हरेक दिन दुई छुटाव लसुगो हिब्रु 11:7 विश्वास ग्यामसेन नुआसे थानोन आरेबा लिच्छा तसेला अम्राङबा तामला बारेरी परमेश्वरजी कुल्बा अनुसार थेसी ग्रेन पानी जहाज गिक सोझी ओछे थे पानी जहाज नङरी थेसे रङला मिगदेदा थान्सी जोगब लजी चुरङ नसी थे विश्वास ग्यामसेन जम्बुलिङला मिगदेला दोष उन्जी ओछे थे रङला विश्वास ग्याम परमेश्वर जा सेम निभा मी दोजी परमेश्वर से दर्शन पिंसिबा जहाँ सोबन लामा बेनान से नुआला खेल से फ्यांगजी नेबा मुबा तसै नुआ रंगला आलोचना कादेला आवाज न्यानसुबाला सटा परमेश्वरला आवाज न्यानबरी विश्वास योग्य मुबा थे आलोचनाका दे क्वी प्रभाइदी ब्लुमजी परमेश्वर से थेदा पिंसुब दर्शन अनुसार नुआ से शुभ डुंगा नोंगरी नुआ दिन थेला जहान सुरक्षित ताजी स्यान्दुदा रंगला भविष्य निर्धारण लबरी थापिन्छुगो परिस्थितिदा रंगला भविष्यला निर्धारण लबरी थापिन्छुगो रंगला लुइरी परमेश्वरसी पिन्छुब प्रतिज्ञा गरेदा रंगला भविष्य निर्धारण सोबरी पिन्छुगो परमेश्वर चाहिँ रंगदा पिन्छुब दर्शन प्रति बफदा तसुगो थेन्दे निश्चित रूपरी परमेश्वरला यासे रंगदा सफलदा क्यार पुइला आमेन रंगिला जीवन रे परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष पिन्छु गई प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रे रंगिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98-86-53-339 हस्त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङ्गी छङ्मदानु जय मसी नमस्कार।